कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई नीतू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

बीते लम्हे पूछते हैं क्यों हुए ऐसे जुदा, खुदा खुदा मिला तो ये फासला है, खुदा तेरा ही ये फैसला है, खुदा